फिर महेश मेरा वो माता पिता का ये भैया जिनके कोखिया लिए नया उतार। सकल पंच के राम राम गुरु जी के बंदगी, सकल पंच के राम राम गुरु जी के बंदगी। मत करो गुमान भैया थोड़ा जिनके जिंदगी, मत करो गुमान भैया थोड़ा जिनके जिंदगी। जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाय के, जिनगी में जिनगी मनुष्य तन पाय के। सब भाई में मिलके रहो या उसी इस नवाय के, सब भाई में मिलके रहो या उसी इस नवा। अरे राम